इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

चलु मंद मनमथ पाठ पहिल अनुबंध हृदय मुकुल हिरि हिरि थोर खनि अचर दाए खनि होए भोर।